0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ। गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: गुड न्युज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुत तेज रोकाको साथमा।

छु याना दिगुख छि थगुहे शक्ति छेला समाधान माला चुना दिएला वा छि प्रार्थना याना येशु ख्रिस्थ उना छित मागु लिस ब्यादी धका भलसा याना दिया येशु ख्रिस्ट के हे भलसा या लेका अले परमेश्वर या शान्ति छिगु नुगले शासन याई थौया वचन याना दिगुली छित परमेश्वर सवा बिमा जय मसी मिपी छिमस नकतिन हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केना दिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसीह।

मिसपाक माई फेट के छिसक सित न सुभ्या। थमिया बचनिया शीर्षक तु बाइबल छ्या थुली महत्वपूर्ण हो आज चाहको ख जीगु विश्वास चमक हयाब्यो भाग एक। बाइबल छ्या अप्यासक बाना धका थौजी छिपिलिसे खलाया मधु। एर्मियाई पुस्तक झिन्यागो अध्याय झिनखुगु पद यु क के धाटौडो छिगु वचन वबले जी उपी वचन नया छिगु वचन याना जित न्याय पुल अले जिगु नुगले लसता भेबिल। एर्मिया थे जित बाइबल बोने व अध्ययन मधु। धाथे धागु खसा जी निनी धर्मशास्त्र बोना अले अध्ययन्याना जी थो याना छ्या धासा थुकी जिगु नुगले लसता वै छ्या धासा थो जी सेना बी मधु। जी छिउ कि छिपिन्छ परमेश्वरिया बस्न नेना दिबले व विश्वासेना दिबले थुकी छिगु नुगले आनन्द है। नापाङ्गु थेस्लो निके निगु अध्याय झिन्सोङ्गु पदके धाटगुदु जिम्स परमेश्वरियागु वचन निङके बले छिमिस थुकी त मनुयागु वचन मखु परमेश्वरियागु हे वचन ख धका नेना काल। धाथे थो परमेश्वरियागु वचन ख अले थो हे वचन छिमगु नुगले हा कया सोङ्गुदु उकी जिम्स परमेश्वरिया त न्याब्ले सुब्या बिया सुनगुदु झिस न्याब्ले मनु तेस धागु खया त विश्वास आए फैमखो। गब्ले गब्ले इमी त झित सत्य ख धाई गब्ले गब्ले इम्स झित सत्य ख धाई मखो। बरु परमेश्वर गब्ले न मखु ख हाना दि मखो वैकल थगु वचन धया दिगु फुक्क ख झित विश्वास याफै अले गुब्ले झिस परमेश्वरिया बचने बिया तगु बचन या त विश्वास यही बले वो न्याब्ले न सत्य जुई अले थोहे जुली परमेश्वरिया बच तस् कहे आजु सागु ख जी जीगु जीवने न्याब्ले न थोख थुके मफुत जी ल्यामे बले जी कलेजे उना चोङ्गु बले जी यक्कु संघर्ष सामना यामाल जी छुया मास्ते वो गनाउने मास्ते वो छुजुई मास्ते वो धका जी मुस्यु जी सुगु ला थोहे ख कि जीगु जीवने गथे जुया चोङ्गु धका जी ले तागु मधु जी जीगु जीवने छु महत्वपूर्ण ख तना चोङ्गु ख अले वो ख छु धका जी मस्यु जी लिस माला चुनगु ख जी थन छ्या दुगु ख जीगु जी उद्देश्य छुख सत्य छुख जी परमेश्वर या त विश्वास याना एसा न वैकल जीगु पाखे छुमा धका जी मस्यु अले वैकल जीगु वास्ता याना दि लाकी याना मदी धका जी जीगु अस्तित्व या उद्देश्य वो मयागु कारण माला चुनगु ख घामे थुपे फुक्क न्योसा बिचा या ना सुनु भले अन निम मनु त दुगु ख उपी जी चुना सुनु थास पेस किलोमिटर टापाको बाइबल कलेज बोना छुपे ख छगु आजु सागु परिस्थिति के परमेश्वर थुपे निम मनु ते त जिमी गामे निगु हप्ता या विशेष सेमिनारी इभान्जलिस्टिक मिसन या नीति छोया दिल कल इमुगु उद्देश्य जिमु गामे सत्य सेके गु मनु त माले नीति ख उबले जी जिमी दाजुली से छगु अपार्टमेन्ट के चुना सुनुगु ख छनु सनि इले जी छे छ्यौले जी थुपी निम मनु त जिमी दाजुली से खलाना चोङगु खन जिमी दाजु इम त सार्वजनिक थासे नाप्लाना जिमथा छे हया तगु खने थुपी निमेहा इमगु बाइबल च्याकल अले जी इपी उत्साह जाएगु खन जिज्ञासा जी इमगु खला बला नियनुगु सुरुयाना जिगु जीवन गुब्ले न नापा थे मजुल। बाइबल धर्मशास्त्र जिमी दाजु या त सेना चुङ्गु नियन बले जी बुलु न जिगु जीवने छुछु तना चुङ्गु दु धका थुइके सुरुया न अन जी उत्सुकतापूर्वक माला चुनागु लिस लुइके फत। एर्मिया निगु अध्याय झिन्सोङ्गु पदके धाटौदु छ्या धासा जिमी प्रजा निगु पाप यागुदु जी जीवन बिगु लया मोहानिया त इम्स तोतुकुदु अले थगु नीति ल मचुनिगु फ्वा गङ्गु त्याङ्की देकुदु थु खल बला उगु इले जिगु जीवन या त बयान याय त सुरु या त उब्ले जिगु जीवने शून्यता व शङ्का जाया चोङ्गु ख छु यायगु स्वेबले जित थथे महसुस जुई असफल हे जुई छ्या धासा जी थगु बुद्धि व शक्ति छेला ज्यायागु कुत याना चुनगु ख अले जी गन थेङ्केगु मति यायगु ख अन थेङ्के त उली हे मगागु ख थुपी निम मनुते पाखे जी जिगु सफलता या कारण सिका कया जी छु माला चुनगु ख व लुइका थो मुआगु ल या मुहान ख उकी परमेश्वर यु वचन ख निगु तिमोथि सोङ्गु अध्याय झिन्खुगु पदके धाटगुदु धर्मशास्त्र यु फुक्क ख परमेश्वरिया प्रेरणा चोगु ख थुकी सेनेकले या त नियने त डोङ्गु भिङ्के त वो थ कथ मया त जीव बि बाइबलले दुगु डोङ्गु ख त परमेश्वरिया मुतु वोगु जी लुइगा
जी सिका कि झिसा बाइबलले चोया थो गु सकता बचाउ उत्पत्ति निहे प्रकाश तक विश्वास आए फै छा धासा थो बचाउ त हे परमेश्वर पाखे वो गुख घुमिस्या थ पृथ्वी व आकाश व झिसा खना चङ्गु फुक्क ग्रह व नगु त देखी गुख थुकिया अर्थ बाइबलले शुद्धता नीति विश्वास आए फै अले सत्य यु सन्दर्भ या रूपे विश्वास आए फै जी थो न लुइका कि धर्मशास्त्र झिगु नीति त फाइदाजनक जु परमेश्वर झित गथे मुआके मती दु व अथे हे मुया त इम्स झित लकेनी त ग्वाहलियाइ अले परमेश्वर या इच्छा झित आनन्द व समृद्धि जागु जीवन हने त लकेनी गु ख भजन संग्रह छगु अध्याय छगु निहे तिनटा कटाया तौडु धन्य ख व मनु गुम दुष्ट या ख खे जुई मखु गुम पापी यागु ल धनी मखु अले गुम करपिन्ट कोहिंका जुई पिनी गुलिसे पुसले टुनी मुखो बरु व परमेश्वर या व्यवस्था के ले ताना सुनी चाने यकु यागु हे व्यवस्था के ध्यान याना सुनी व खुशी सिथे पिना तगु सीमा थे ख व न्याबले न थगु इले फल बी अले व यागु ह न गुब्ले न सुकु गना मुनी मुखु व यागु यागु ज्यान पुनी गब्ले न झिसा परमेश्वर या बचन न्यानी बले परमेश्वर झित थगु बचन छु धका दयादी गु ख झिसा विश्वास आई अले परमेश्वर झिगु जीवने अजु चागु फल हेगु बचन बिया दगु दु परमेश्वर झित त धङ्गु शारीरिक मानसिक व आत्मिक समृद्धि प्राप्त याए त ग्वाली याना दि निगु तिमोथी चोङ्गु अध्यायु झिन नेगु पदके देहातगु दु परमेश्वर या मनु तेस ज्यागु भिङ्गु ज्याख न याए फेमा धका धर्मशास्त्र बियातगु ख थुगु पद झित बाइबल उद्देश्य कनी बाइबल गुब्ले न अविश्वासी टेगु नीति चोया तगु मुखु ठो ख परमेश्वर या त अस्वीकार याइपिनु नीति चोया तगु मुखु बाइबल वेकया त वा कया इच्छा सेके मधुकी वा सत्यता सिके त व विश्वास आए त मास्ति ओपिनीगु नीति सोया त गुख सत्य थुके मास्ति ओपिनीगु नीति बाइबल जित सुसज्जित आए त मागु फुक्क खदु उठे झिस परमेश्वर याए मास्ति वो गु सक्ता भिङ्गु ज्या झिगु जीवने याए फै भजन संग्रह सच्यो झिन्गुगु अध्याय सच्यो सुइखुगु पत्के धात गुदु गथे यक्कु धन दया मनुत लेताय अथेहे जी छिगु बचने कारण लेताया परमेश्वर यु बचन त धङ्गु धनख छा धासा झि परमेश्वर या बचन गुब्ले न अले उकिया त विश्वास याई बोले झिगु थगु जीवने झिके त धङ्गु छुटकारा दै जी छित बाइबलले छि लुइके फैगु त धङ्गु टोपुया टगु उदाहरण बी भजन संग्रह सच्छि व पिनेगु अध्याय यो सोगु पदके धाटगु दु वेकल नुग क्वातु पिन्त लागादि अले इमगु घायल पट्टी छिनादि छि गब्ले न सुन मनु पाखे तस्क निराश जुयादि।